0: बल बल जाइए, बल बल जाइए।
1: ससा नदी दे कंडे ते बड़ा घोर युद्ध होया, भाई उदय सिंह ने साहबजादा अजीत सिंह ने ऐसी तेग चलाई, दुश्मनां नू भजना पै गईयां। ससा बड़ी ठाठा मारदी सी, इस नू पार करना बड़ा औखा सी। ससा दे किनारे ते गुरु महाराज दे सिख संगतां ते गुरु महाराज दा परिवार विछड़ गया।

अंतर ध्यान हुए सन जेड़े पता चल गया कि आज मेरा सेवक जिसनु ने थावा किया है इतनी सेवा करण वाला करड़ी सेवा करण वाला जिसनु ने थावा किया है उसनु ते निथाविया दे थाम होना चाहिदा है। बस भगती परवान होई सेवा परवान होई ते ज्यों ही आ करके बाबा अमरदास जी गुरु अंगद देव जी नु इशनान कराया ते इशनान करके बिठाया तखत ते ते वर देने शुरू कर देते। भई बाबा अमरदास जी तुसी ते निमाणिया दे मान हो निताणिया दे तान हो न्योटिया दी ओट निगत्या दी गत ने पत्या दी पत। पाईसा पाई गुरुदास जी ने इस सेवा नू जदों परवान होया देखिया ते फिर बई कवित दे विच कलम बद कीता इस कारण करके के आन वाले संसार दे सेवकां नू पता चल जावे के एक गुरसिख नू इशनान करन दा कितना क फल मिल सकदा है। मगर ओ गुरसिख होवे गुरु अंगद साहिब वर्गा ते फिर कोई सेवा

प्यार नाल, प्रेम नाल, इतना सिमरन कीता कि मानो उस परमात्मा दी जोत नूं हरी मंदर दे विच टिका देता। ते भाई साहब भाई गुरुदास जी कहिंदे ने जैसे सत मंदर कंचन

फुके जावा सावन वन हरियावले सुके जावा सबको सरसा वर्ष दे जूरे जोला सब नारा तुम नावना सबना रात मिलावड़ा चकवी दोरा संख समुंदो सखना रोवे देता राव उच्चन जो पवे मुस्ते फहा त्यों जग अंदर बेमुखा

छाए छुट्टड़ होई मक्खन लया विरोल कै छाए छुट्टड़ होई पीड़ लई रस गन्नेओ छिलछू है न कोई रंग मजीठो निकले अड लहे न सोई वास लई फुलवाड़ियों फिर मिले न टोई काया हंस विछुन्या टिस्को न सथोई

हलत मन सुगावे। ठंडा तत्ता कोयला काला करके हथ जलावे। ज्यू चक चूंदर सप दी अन्ना कोड़ी कर दिखलावे। जान रसौली देह विच वटी पीड़ रखी शर्मावे। वंश कपूत कुलछना छड़ियां बने ना विच समावे।

देखी है। जैसे घाव घायल के जतन के नीको होत पीर मिट जाए लीक मिटत न पेखिए। जैसे फाटो अंबर सियाए पुन ओडियत नांगो तो न होए तो थेगरी परेखी। जैसे फूटो बासन सवार देत है ठठेरो गिरत न पानी पे गठीलो पेख पेखी है। तैसे गुरशरण विमुख

वंशघात अपराध करारे, मद पी जुए खेल दे जोहन पर नारे, मोहन पराए लक्ष्मी ठग चोर चगारे, विश्वास द्रोही आकृत घन पापी हत्यारे, लख करोड़ी जोड़ियन

फिर चक्की चट्टे कुत्ता राज बहा लिए फिर चक्की चट्टे सप्पे दूध पिया लिए व्यो मुखों सुटे सप्पे दूध पिया लिए विहो मुखों सटे पत्थर पानी रखिए मन हठ न घटे चोआ चंदन पर हरे खरखे पलटे त्यों निंदक पर निंदो हठ मूल न हटे अपन हथी अपनी जड़ आप उपटे अपन हथी।

हर चंदौरी देख के कर दे परवासा थल विच तपन पठियां क्यों लहे प्यासा सोने राज कमाई है कर भोग बिलासा।

थक आए भक्ति सा, थक आए पर बंधना अखबार, थक पर्यो प्रभु दरबार। थक आए प्रभु की शाम, चार कुंठ दस पर में, जोन अनेक बिखे प्रम आयो, आए अनेक जन्म प्रम शरणी। लख 84 जूना परम दे से पाशाह तुरे द्वारे आए हैं, आए अनेक

मैं ता कालू दे घर माता तृप्ता दी कुख चो जदो जन्म लिया दौलतां दाई ने वेख्या के जिस कोठड़ी विच आ बालक जन्मे है ओ सारी कोठड़ी प्रकाशमान हो गई है और जिवें हजारां नहीं लखां नहीं करोड़ां जय जयकार दियां आवाजां आ रही हैं और एक ऐसी महक उस कोठड़ी विच प्रकाश उस कोठड़ी विच जिस वेले ए बालक ने जन्म लिया आ जन्म लेंदियां ही आ बालक मुस्कराया हैरान रह गई दौलतां दाई मेरे हत्थां विच अनेक बालक पैदा होए लेकिन ए तां कोई अनोखा ही बालक है दर्शन पा के दौलतां दाई धन हो गई सत सिखत बोलो श्री बधाई दीतीस बार आई कोठड़ी विचों बधाई दीती मेहता जी वधायो तुहाडे घर तां कोई अनोखा ही बालक जन्मे जिसदे जन्म लेंदिया ही सारी कोठड़ी प्रकाशमान हो गई जय जयकार दियां आवाजां आ रही हैं चारे पासे सुगंधी फैल गई है मेरा मन कहिंदा है ए कोई साधारण बालक नहीं है ए तां कोई परमेश्वर दा उस अकाल पुरख वाहेगुरु दा कोई रूप ही तुहाडे घर आया है सात संगत बोलो श्री गुरु नानक सच्चे पातशाह ने रात्रि दे तीसरे पहर दे आरंभ विच जन्म लिता मेहता कालू ने समा लिख लिया और जदों सवेरा होया अमृत वेले पंडित हरदयाल दे घर गया और कहन लगा रात मेरे घर बालक होया ते मैं चाहना हां उसकी जन्म कुंडली तैयार करो पंडित हरदयाल उठ के बैठा मेहता जी नू बिठाया कोल कालू जी नू मेहता कालू नू कोल बिठाया पुछया कितने बजे होया बालक आखे तीसरे पहर दे आरंभ विच जदों पंडित हरदयाल ने अपनी ज्योतिष विद्या दे नाल सारी जन्म कुंडली दा हिसाब बढ़ा के तैयार कीता ते जदों लिखण लगा ते कलम रुक गई कहन लगा मेहता जी जे मैं लिखदा हां तां मैनू समझ नहीं आउंदी के मैं ठीक लिख रहा क्योंकि और नहीं लिखदा तां मैं ए वेखदा कि मेरी ज्योतिष विद्या कदे गलत नहीं हुई मेरे हिसाब नाल ए बालक दुनियावी बालक नहीं ए तां परमात्मा दा रूप है सत सगत बोलो श्री ए प्रभु दा रूप है मेहता कालू ने खुश होके पंडित हरदयाल नू इनाम वजो धन दिता और प्रसन्न होके घर आया हुण चारे पासे माता तृप्ता नू मेहता कालू नू वधाइयां मिल रहियां हैं कि अज बालक ओ बालक पैदा होया है जिसका दर्शन करके सब दा तन मन ठर गया है प्यारी साध संगत आ बालक पता है कौन है ए बालक आप नारायण कलातार जग में परवरे हो आप नारायण दा रूप गुरु नानक सच्चा

गल नहीं, परमेश्वर तेन होर देवेगा, होर देगा तेन। उन्हें आख्या प्रभु ता परमेश्वर पिछों देवेगा, पहला तू मेनू हर जाना दे। साहब जी दी बां पकड़ ली, आख्या जे हर जाना नहीं देंगा ता तेनू राय बुलार को लै चलांगा। गुरु नानक दी बां पकड़ के खेत दा मालक जदों राय बुलार दे कोल पहुंचिया, आख्या राय जी इस बालक दी गाइयां मजियां ने मेरे

कितनी देर हो गई बाहर ही नहीं निकल रहा। ए भाई जयराम घबराया, बेबे नानकी दे कोल आया ते कहन लगा नानकी तेरा वीर वेई विच डूब गए। बेबे नानकी प्रतीत वाली सी परोसे वाली सी कहन लगी इवें ना आखो मेरा नानक संसार विच डुबण वास्ते नहीं आया ओ तां कईयां नूं तारण वास्ते आया है। नानक कदे डूब नहीं सकदा ओदा जरूर कोई कोतक होवेगा कम होवेगा किसे कम नूं गया होवेगा ओ जरूर आवेगा।

द्वारका दे मालिक और द्वापर युग दे मालिक भगवान कृष्ण जी ते गरीब सुदामा दोनों ही बचपन दे इको गुरु दे शिष्य बचपन दोनों दा इको गुरु दे पास गुजरिया मगर ज्यों ज्यों वक्त बीतदा गया वड्डे हो गए सुदामा गरीब रह गया भगवान कृष्ण महाराजे बन गए द्वारका नगरी दे मालिक बन गए ते पाईसा पाई गुरदास जी ने बहुत गहरे तल ते जाके भगवान कृष्ण ते सुदामे दी मित्रता नु सामने रखदे होए कुछ अपने विचार फरमान कीते हन पौड़ी विच कहंदे ने कुछ मित्रता दियां निशानियां दित्तियां ने भगवान कृष्ण बारे ते सुदामे दे बारे कि किस तरह दी मित्रता सी। पाईसा फरमान करदे ने बिप सुदामा दाल दी बाल सखाई मित्र सदाए लागू होई बामणी मिल जगदीस दलिद्र गवाए। कहंदे ने बिपता दा मारिया दलिद्री सुदामा सारे कहंदे ने कि ए भगवान कृष्ण जो अज दे मालिक ने ए उन्हां दा बाल सखाई मित्र है ते एडे वड्डे भगवान कृष्ण महाराजे जेड़े हन द्वारका नगरी दे जेड़े मालिक हन अनेकां गरीबां नूं दान करदे हन सुख दिंदे हन ते ए बाल सखाई मित्र सताउंदा होया इस नूं सारे कहंदे हन ए बाल सखाई मित्र है ये सदाउंदा है बाल सखाई मित्र ते फिर भी गरीब है रोज उसकी पत्नी क्योंकि ब्राह्मण है सुदामा ते एदी पत्नी नू ब्राह्मणी कहा है कहंदे ने रोज ब्राह्मणी कहंदी है कि ए सुदामा तू जगदीश नू मिलते सही वो तेरे दुख दूर कर देवेगा। ते भाई साहब इसे मित्रता दियां निशानियां नू दसदे होए अगे फरमान करदे हन

द्वारका नगरी पहुंचया ते भगवान कृष्ण दे दरबार नूं सिंह द्वार कहा है। सिंह दा मतलब है शेर, ते जेड़ा शेर दी शरण विच चला जावे फिर उस नूं होर किसे दी शरण दी लैण दी लोड़ नहीं पैंदी। भगवान कृष्ण जी दे दर ते चला गया, ते जदों चला गया दूरों भगवान कृष्ण जी ने देखिया गौ नाल जिस तरह उसे दी उलीक विच बैठे हन। अंतरयामी भगवान कृष्ण दूरों सुदामे नूं देखदे होए अपना सिंघासन छड़ के सुदामे वल वधे। पाइसा फरमान करदे हन,

जी ने बड़े ही गहरे जाके बड़े ही गहरी विचार विच जाके प्रमाण की थी। किसे मित्र नू मिलना होवे ते मित्र नाल हाथ मिलाया जाता, किसे मित्र नू मिलना चाहे ते गलवकड़ी विच लिया जाता है, पर किसे मित्र नू मिलना होवे ते अपना सिंघासन छड़ के भी जाया जा सकता है दूरों देख के। मगर भगवान कृष्ण सिर्फ सिंघासन छड़ के सुदामे वाल नहीं बदे। कहंदे ने इतनी निम्रता नाल भगवान कृष्ण वधे सुदामे वाल, और सुदामे दे कोल जाके कहंदे ने सुदामे दी पहले प्रदक्षिणा ले। सुदामा खड़ा है और भगवान कृष्ण ओदी प्रदक्षिणा ले रहे हैं, और प्रदक्षिणा लेके फिर सुदामे दे पैरी पैंदे हन, ते पैरी पैके सुदामे गरीब नू अपने गले लगांदे हन। भाई साहब गहरे तल विच जाके सारे संसार नू ए मैसेज दे रहे हन भगवान कृष्ण दा, क्योंकि सुदामा उना दा बाल सखाई मित्र है, ते बाल सखाई मित्र होण दे नाते ओ दोनों एक गुरु दे शिष्य सन। ते जदों पहली वारी देखिया सुदामा मेरे द्वार ते आया है, कहंदे ने दूरों देखिया देखते सुदामे वल रहे हन, पर सुदामे दे विच्चों अपने गुरु दे दर्शन कर रहे हन। उस गुरु दे जिस गुरु पासों दोना ने बचपन दे विच सिखिया लई है। सुदामे दे विच्चों भगवान कृष्ण अपने गुरु दे दर्शन करदे होए सुदामे वल वधे, ते प्रदक्षिणा लई जिस तरह के अपने गुरु दे ले रहे हन, फिर जिस तरह प्रदक्षिणा लैके पैरी पै गए, और पैरी पै के जदों तक पैरी पए हन उदों तक सुदामे विच्चों अपने गुरु दे दर्शन कर रहे हन। ज्यों गुरु दे दर्शन हो गए ते सुदामे नू अपनी गलवकड़ी विच लाया, ते कहंदे ने फिर सुदामे नू लैके सिंघासन वल वधे।

भली राज पूले कहूं पवर होए के भली पात पूले कहूं फूल होए के भली राज पूले कहूं भवर होए के